कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल्ड प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश

एफएम अध्यात्म ज्योति को अब को प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम शुभ प्रभात में म सभिका तिवारी अब 8 बजेसम्म मधुर भजनहरुका साथमा यहाँहरुसँग रहनेछु।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो।
1: FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
2: जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति में अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भजनार्पण। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जे जे ज्वेलर्स, बसंतपुर न्यू रोड, दमकल नजिक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिनँ।

0: मिले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति।

हमारा देश पूरे विश्व में शूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए, ऋषि मुनियों के तप के लिए और देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक चमत्कार एक महिला के साथ हुआ। इस कहानी का एक एक शब्द सत्य है और शिक्षा प्रदान करने वाला है।

महिला दिल्ली की रहने वाली थी। दिल्ली में ही शादी हो गई। ससुराल आने के बाद भी इस महिला ने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, फिर भी वो महिला वृंदावन जाती रही। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। आखिरी बार जब वो वृंदावन गई तो मन में सोचा, अब शायद जीवन में वृंदावन आना हो पाएगा या नहीं। ये विचार आते ही उसने एक बड़ी प्यारी सी कृष्ण लला की मूर्ति को एक दुकान से सोचा, अब शायद जीवन में वृंदावन आना हो पाएगा या नहीं। ये विचार आते ही उसने एक बड़ी प्यारी सी कृष्ण लला की मूर्ति को एक दुकान से खरीदा और अपने साथ दिल्ली ले आई।

अष्टमी का पवित्र दिन आया। दुर्भाग्य से उस महिला का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। अपने बेटे और बहू को बुलाया और बोली, आज जन्म अष्टमी है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए तुम मेरे लला को आज दूध से स्नान कराकर, चंदन का लेप लगाकर, माखन मिश्री का भोग लगा दो। इनका जन्मदिन है, इसलिए इन्हें नए वस्त्र भी पहना दो। इतना सारा काम सुनकर बेटे बहू को अच्छा नहीं लगा, ये सब एक झंझट सा लगा, लेकिन माँ की तबीयत खराब देखकर वो कुछ नहीं बोले और बेमन से माँ का कहना मानने लग गए। लला को स्नान कराने के लिए जैसे ही मूर्ति को हाथ में उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। बगल के कमरे में बैठी माँ को जब मूर्ति गिरने की आवाज आई तो उसके कलेजे को धक्का लगा। माँ का दिल था सो जान गया कि कोई अनहोनी हो गई है। पूछने पर बेटे ने बताया कि माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस कपड़े बदलते हुए मूर्ति हाथ से छूट गई। मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, माँ तू मत घबरा, चिंता की कोई बात नहीं है। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया। ये सुनकर सन्न हो गई और बेटे से बोली, बेटा तू कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ, मेरा छोटा सा लला इतनी ऊपर से गिरा है, पता नहीं कहां कहां चोट आई होगी उसे, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत भी है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली,

माँ अपने बच्चों से डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे और बहू ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं मानी। बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया, जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है। अगर पड़ोसी डॉक्टर को देखेंगे और सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे माँ तो पागल हो गई, साथ में बेटा बहू भी पागल हो गए। माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुलाया है। इतने में बूढ़ी माँ का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घर में बहसबाजी हो रही। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने कहा, क्या बताऊं भाई साहब, मेरी माँ थोड़ा सा पागल हो गई है। वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई थी। कहती है, ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज माँ ने मुझसे कहा कि लल्ला को नहलाकर इसके कपड़े बदल दो। ज्यों ही मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक ये लल्ला की मूर्ति मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अब माँ कहती है कि डॉक्टर बुला के लाओ, वही देखकर बताएगा कि लल्ला को कुछ हुआ तो नहीं। लल्ला ठीक तो है, अब आप ही बताइए। ये बात जो भी सुनेगा वही हंसेगा। इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। एक पड़ोसी बड़ा समझदार था, उसने बेटे को समझाया कि बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता। तुम्हारी माँ के मन में जो ये वहम हो गया है, उस वहम को निकालना बहुत जरूरी है। इस झगड़े से अच्छा है तुम माँ का कहना मान लो। यही बगल में ही एक डॉक्टर रहता है, तू उसको जाकर सारी बात समझा दे, उसकी फीस भी वही दे देना। तेरी बात तो तेरी माँ मानेगी नहीं। हाँ, जब डॉक्टर आकर उसे समझाएगा तो वो मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और तेरी माँ का वहम भी खत्म हो जाएगा। पड़ोसी की बात बेटे को समझ में आ गई। डॉक्टर के पास जाकर सारी बात समझाकर उसे मनाया और उसकी फीस भी घर पर ही दे दी। डॉक्टर बेटे के साथ आने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर घर पे आया और बिना छुए मूर्ति को दूर से ही देख

डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई है तेरी। डॉक्टर माँ की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। माँ से बोला, मेरी उम्र 65 साल है। माँ बोली, डॉक्टर तूने अपनी जिंदगी के 65 साल ऐसे ही बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज की नब्ज देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने दूर से ही देख करके मेरे लल्ला को कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, अरे तू चेक तो करता इसे। ये सुनकर डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आया। बोला, ले माई तेरा वहम निकाल देता हूं। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी और माई से बोला, क्या है। कुछ भी नहीं। उसने माथे पे हाथ रखा और बोला, माई क्या है। कुछ भी नहीं। फिर सीने पे हाथ रखकर बोला, देख माई इसे कुछ भी नहीं है। तब बूढ़ी माँ बोली, प्यार से देख डॉक्टर, अभी मेरा लल्ला बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे लल्ला की नब्ज ही ना चल रही हो, सीना धीरे से धड़क रहा हो और तू हाथ से पकड़ ना पा रहा हो। माँ की ममता थी, नहीं मानी। बोली, डॉक्टर तू मेरा वहम निकालने के लिए मेरा एक काम कर दे। तू अपने बक्से में एक मशीन रखता है ना। अब बूढ़ी माँ स्टेथोस्कोप का नाम नहीं जानती थी, डॉक्टर को उसका नाम नहीं बता पाई। बोली, उस मशीन से धीरे से भी धड़कने वाली धड़कन को पकड़ा जा सकता है। एक बार तू उस मशीन से चेक करके मेरा वहम निकाल दे। डॉक्टर ने फीस ली थी और उसका फर्ज भी बनता था कि घर वाले जैसा कहें उनकी बात को माना जाए। ये सोच डॉक्टर ने बक्से में से स्टेथोस्कोप निकाला और अपने दोनों कानों में लगाकर गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पे रख दिया। आगे क्या हुआ सुनिए।

मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर के होश उड़ गए, हाथ कांपने लगे। मन में सोचने लगा कि अभी तक तो बूढ़ी माँ को वहम था, कहीं मुझे तो वहम नहीं होने लगा। उसने सैकड़ों बार चेकिंग की, लेकिन धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कानों से निकाला, पसीने में लथपथ जमीन पर बैठ गया। बूढ़ी मां ने पूछा, डॉक्टर कुछ समझ में आया कि मेरे लल्ला को क्या हुआ है? अब वो ठीक है? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर बूढ़ी मां से कहा, मैं डॉक्टर हूं, नब्ज देखकर बीमारी पकड़ लेता हूं। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है कि तेरे लल्ला को क्या हुआ है। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले तो उसकी आत्मा को तो ज्ञान हो ही जाता है। डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था। बूढ़ी मां से बोला, मां तू ये मत समझना कि मूर्ति तेरे बेटे बहू के हाथ से गिर गई है। बेटे बहू को दोष मत देना और उन्हें डांटना भी नहीं। लड्डू गोपाल कैसे गिरा ये डॉक्टर जान गया था। मेरे बक्से में ऐसी कोई दवाई नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। बड़े ही भावपूर्ण विनम्र होकर डॉक्टर ने मां से कहा, अगर वो दवाई है तो सिर्फ तेरे पास है मां।

डॉक्टर ये कहकर उठने लगा। उसने अपना बक्सा स्टेथोस्कोप वहीं छोड़ दिया, जो फीस ली थी वो भी वहीं रख दी और जाने लगा। ये देखकर वो बूढ़ी माँ बोली, रे डॉक्टर, अपना सारा सामान छोड़कर तू कहाँ जा रहा है? कम से कम अपना बक्सा तो लेता जा। ये सुनकर डॉक्टर बोला, माई, अब इस सामान की मुझे कोई जरूरत नहीं, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर अपनी आंखों में आंसू भर करके बोला,

0: సాబేల్ చుచ్చేపాటి
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
5: बार्सिलोना

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: अब आओ आज की ये रात हम यूं ही बसर कर लें। तुम अपना मुंह उधर कर लो, हम अपना मुंह इधर कर लें।
1: अगर गुस्सा ही करना है तो गुस्सा इस कदर कर लो, तुम्हारा मुंह जिधर है पीठ भी अपनी उधर कर लो। हाँ, क्या हुआ? अरे

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

0: अभी आपने सुना था नहीं रउवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज।
1: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूलझड़ी।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सबै भन्दा पुरानो चाँदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँहरुको सेवामा निरन्तर लागिरहेका छौ विगत 2 दशक देखि त्यसैले त हामी गर्व गर्छौ किनकि हामीले यहाँहरुको विश्वास जित्न सफल भएका छौ।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधिबाट आफ्नै कारखानामा निर्मित बिना रसायनका पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्यका लागि चाहिने यहाँले चाहे बमोजिमका चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्री लगायत गिफ्ट आइटमहरुका लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छानामुनि चाँदीका सबै सामानहरु।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजारको अगाडि फोन नम्बर 4227345423355।
2: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूँ।
3: अभिन अपने सुना तानी नौवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: Weekend Classic Radio Show.
1: Yes, Weekend Classic, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और कुछ बेहतरीन गाने और बेहतरीन अनसुने किस्से आप सुनने वाले हैं सुनहरे दौर के। देखिए साहब, ऐसा है कि जब अशोक कुमार हीरो बने तो पूरी दुनिया ने तारीफ करी। किशोर कुमार नाराज, उन्होंने अपने बड़े भाई को नाराजगी भरा खत लिखा था। क्यों नाराज थे, ये किस्सा मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर हम आज भी हैरान होते हैं कि यार क्या संगीत दिया है। तो मीरा तो पग घुंघरू बांध नाचे थी, आप बिना घुंघरू बांधे भी नाच सकते हैं। बच्चन साहब के साथ जरा ठुमका लगाइए किशोरदा के अंदाज में, सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।
2: Yeah.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

वीकेंड क्लासिक पे ये गाना आपने सुना फिल्म प्यासा से, जॉनी वॉकर साहब पे ये पिक्चराइज हुआ, रफी साहब की आवाज, दादा बर्मन का संगीत। और अब वक्त आया है कि जरा चलें उस तरफ जहां पर नाराजगी भरा खत लिखा था किशोर कुमार ने अपने बड़े भाई अशोक कुमार को। अशोक कुमार हीरो बन गए, फिल्म आई जीवन नैया। खंडवा में ये फिल्म लगी और किशोर कुमार अपने सारे दोस्तों के साथ, बहुत छोटे थे अपने बड़े भाई से, मतलब उनकी एज में बहुत फर्क था, तो अपने सारे दोस्तों को लेकर पिक्चर हॉल में पहुंचे कि भाई मेरे दादा की फिल्म लगी है, चलो देखने चलो। सारे दोस्त पहुंचे, फिल्म देखी, फिल्म में कोई एक्शन था नहीं। ये वो जमाना था जब अंग्रेजी फिल्में ज़्यादा देखी जाती थी जिसमें बड़ा एक्शन एक्शन होता था। अब किशोर कुमार को एक्शन नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि एक दूसरे कैरेक्टर ने दादा मुनि को एक थप्पड़ भी मार दिया। तो किशोर कुमार ने चिट्ठी लिखी कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ दादा मुनि, मेरे सारे दोस्तों को मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, आपने थप्पड़ क्यों खाया, और अगली बार अगर कोई फिल्म करनी है ना तो ये रोंदी बोंदी फिल्में नहीं करनी है, फिल्म करना तो जरा डिशम डिशम वाली फिल्म करना। दादा मुनि वहां मुंबई में हंसते रहे कि देखो मेरा भाई क्या क्या कर रहा है, लेकिन इस बात से सब लोग अनजान थे कि जब किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे

0: वॉशरूम डिशरूम तो करेंगे ही नहीं। हंसी मजाक होगा, कुछ ऐसे हो रहा है इस गाने में भी। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी, तीनों भाई इसमें आपको सुनाई देंगे, दादा वरुण का संगीत है। इसके साथ जरा अपन भी दौड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ा अनोखा गाना, ब्लैक एंड वाइट है पर मज़ा बहुत आता है। उसके बाद कुछ और बड़े अनोखे हैरान कर देने वाले अनसुने किस्से, सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।
1: बाजू

वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और यहां पर कुछ भी गोलमाल नहीं है साहब, बस गोलमाल तो हमने गाना सुनाया फिल्म गोलमाल से आपको। अभी जरा चलते हैं उस जमाने में जहां पर स्टेज शोज बहुत हुआ करते थे, मतलब रिकॉर्डिंग करते थे सारे सिंगर्स और स्टेज शो भी होते थे। तो आशा भोसले ये किशोर कुमार से बड़ा कॉम्पीट किया करती कि मैं देखो उसी अंदाज में गा सकती हूं, मेरे अंदर भी वही शरारत है। और वाकई किशोर कुमार भी मानते कि हाँ आशा के अंदर कुछ बात है। अब एक बार स्टेज शो पर चले गए गाना गाने, तो जितने जोश से किशोरदा गाना गाएं उतनी जोश से आशा भोसले भी गाना गाएं। अब किशोर कुमार ने कहा चलो बेटा बताता हूँ। गाना आया इना मीना डिका, डाय डामा डिका। अब ये गाना जब शुरू हुआ तो स्टेज पर ये दोनों के दोनों खड़े हुए गाना गा रहे हैं, जिस स्टाइल में किशोरदा आए वैसे ही आशा भोसले भी गाएं। तो किशोरदा जमीन पर लेट गए स्टेज पर और वहाँ पर जाके गाने लगे इना मीना डिका डां डां डाना। आशा भोसले ने हाथ जोड़ लिया कि मैं साड़ी पहनकर आई हूँ, मैं स्टेज पर लेट के गाने नहीं गा सकती हूँ। और किशोरदा आप जीते। अब ये सारी बातें कब हो रही हैं, जब वो म्यूजिशियंस म्यूजिक प्ले कर रहे हैं ना, पीछे म्यूजिक पीस प्ले हो रहे हैं, तब आशा ताई कह रही हैं कि अरे किशोरदा बस बहुत हो गया, आप खड़े होकर गाना गाओ, मैं हारी आप जीते। वो और बात है कि जीत तो ऑडियंस ही होती है हमेशा, क्योंकि ये मजा देखने को मिलता है। और अभी वही गाना हम सुनेंगे जिसमें ईना की बात होगी, मीना की बात होगी, डीका की बात होगी, और उसके बाद एक बेहतरीन किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत

0: किशोरदा की आवाज आई, मन्ना डे की आवाज, और साथ में महमूद साहब ने भी दो चार लाइनें इस गाने में गाई थी। राजेंद्र कृष्ण साहब ने इसके बोल लिखे और पंचमदा का संगीत। अभी जरा चलते हैं उस दौर में जहां पर महेंद्र कपूर कुछ वक्त के लिए मोहम्मद रफी बन गए। ये सब कैसे हुआ मुमकिन, ये कहानी जरा बयां करता हूँ। हुआ यूं कि भाई ये वो जमाना था जब ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह छपती नहीं थी, मैगजीन्स भी ज़्यादा नहीं थी। तो रफ़ी साहब की एक परफॉर्मेंस थी रेडियो स्टेशन पर और उन्होंने फ़ोन किया, दोनों ही पंजाब के, रफ़ी साहब भी और महेंद्र कपूर भी। तो रफ़ी साहब ने फ़ोन किया महेंद्र जी को, कहा महेंद्र की कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं पाजी, आप बताओ क्या करना है। कहते वो मेरी परफॉर्मेंस है, तू आ जाए ज़रा साथ में। तो महेंद्र कपूर चले गए तानपुरा, उन्होंने संभाल लिया, रेडियो स्टेशन पर परफॉर्मेंस होती रही और बाहर ज़रा खबर फैल गई कि रफ़ी साहब अंदर गाना गा रहे हैं। और तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हो गए, जब परफॉर्मेंस खत्म हुई रफ़ी साहब बाहर है तो लड़के लड़कियाँ चिल्लाने लगे, क्या चिल्ला रहे हैं? ऑटोग्राफ चाहिए ऑटोग्राफ। आजकल तो सेल्फी और फोटोग्राफ का जमाना है, पर उस जमाने में सिर्फ ऑटोग्राफ ही चलता था। तो रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर साहब की तरफ देखा और कहा कि यार ये ऑटोग्राफ क्यों होता है? तो उन्होंने कहा ऑटोग्राफ क्या है, वो बेस्ट विशेज लिख देते हैं ना आराम से, तो अपना नाम कर देते हैं, साइन कर देते हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा देख यार, इनको क्या मालूम कि रफ़ी कौन है, महेंद्र कपूर कौन है, वो तू ही कर दे यार, तू ही रफ़ी बन जा, तू ही साइन कर दे। तो कुछ वक्त के लिए महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी बन गए और उन यंगस्टर्स की डायरीज पे वो ऑटोग्राफ साइन करते रहे बतौर रफ़ी। है ये बड़ा अनोखा किस्सा, ऐसे और भी बड़े ज़बरदस्त अनसुने किस्से कहानियां आपके साथ बांटेंगे। और अभी महेंद्र कपूर साहब की बात हुई है तो एक काम करते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं, गाना आए ना आए गा लेते हैं, पति पत्नी और बहू से इस गाने को सुनते हैं।
1: ठंडे ठंडे पानी से

0: से
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।
1: मम्मी को तो डायबिटीज से

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

पता चलता है कि बच्चन साहब की आवाज का जादू आज ही नहीं साहब गुजरे वक्त में चल पड़ा था। वो और बात है कि ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था एक बार नहीं दो मरतबा कि भाई आपकी आवाज में वो दमखम नहीं है। पर एक्टिंग से भी पहले अमिताभ बच्चन ने जो कमाई की वो कमाई अपनी आवाज की बदौलत की थी। क्या हुआ ये कलकत्ता से यहाँ पर आ गए मुंबई और उस जमाने में तो बंबई कहा जाता था खैर, और एक बड़े जबरदस्त फिल्म मेकर मृणाल सेन साहब एक फिल्म बना रहे थे। तो ये बच्चन साहब गए वहाँ पे और कहने लगे मेरे लिए कुछ काम हो, तो कहते कोई काम नहीं भाई तुम्हारे लिए, कहते फिर कुछ तो करिए आप, कहते एक एक काम कर सकते हो तुम नरेशन कर सकते हो तो बताओ। तो बच्चन साहब ने कहा हाँ हमें बांग्ला जानी, तो बांग्ला जानी नहीं मुझे हिंदी में नरेशन चाहिए, हिंदी में वॉइस ओवर चाहिए। बच्चन साहब तैयार हो गए। उस वक्त तक ये अमिताभ बच्चन की तरह नहीं आए थे, क्रेडिट्स में अगर आप नाम देखेंगे तो वो नाम आता है अमिताभ। और ये फिल्म कौन सी थी, ये फिल्म रही भुवन शोम। भुवन शोम में अमिताभ बच्चन ने पूरा नरेशन किया है और पहली कमाई फिल्म इंडस्ट्री की अपनी आवाज़ के जरिए ही इन्होंने जो है कमाई थी। अब जिनकी आवाज़ की इतनी बात कर ली है साहब, तो एक काम करते हैं इनके अंगने में चलते हैं, भले ही हमसे लाख पूछते रहे कि तुम्हारा क्या काम है, फिर भी हम जाएंगे इनके अंगने में क्योंकि हमें इनसे बेइंतहा मोहब्बत है। फिल्म का नाम है लावारिस, और लावारिस नहीं साहब बड़े जाने माने किस्से जो हैं जिनके वारिस हैं वो हम आपको सुनाते रहेंगे और गाने भी।

नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: आज 10 वर्ष बितेको थाहै भएन।

हिरण कभी भी दौड़ता है तो आगे देखता है, पीछे नहीं देखता। लेकिन मारीच जो सुवर्ण का वर्ग बनकर के आया, माताजी ने आग्रह किया, राम जी लक्ष्मण को छोड़कर जब गए तो कहते हैं हिरण दौड़ रहा है आगे और देख रहा पीछे, क्योंकि उसने सोचा जितना राम को निहार लू उतना ही कल्याणकारी। बाण लगती हाँ लक्ष्मण कह दिया, माताजी ने उनको भी भेज दिया, रावण संत के रूप में आया, परम्बा का हरण कर लिया। दक्षिण भारत में एक ग्रंथ है, दक्षिण की यात्रा पर जब मैं था तो मैंने उस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर देखा, तमिल भाषा में था। एक इतनी विचित्र बात लिखी उस ग्रंथ के महापुरुष ने, कहा कि माता जानकी जी के हरण से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में जानकी केवल माता ही थी और कुछ नहीं थी। उन्होंने वहां तर्क प्रस्तुत किए। वो संत लिखते हैं कि रावण ने यदि जानकी जी का स्पर्श करके उनको रथ में बिठाया, आकाश मार्ग से ले गया, तो उसके सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि रावण को तो शाप लगा हुआ था कि काम भावना से किसी भी नारी का तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो माता जानकी जी को हरण करके ले जा रहा है, तब सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो संत ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, क्योंकि तो माता जानकी जी को हरण करके ले जा रहा है, तब सिर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो संत ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, क्योंकि माता जानकी जी के हरण से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में वो केवल मां ही है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ये उसको सांप लगा था, किसी भी स्त्री को तुम काम भावना से स्पर्श करोगे अपनी पत्नी के अलावा तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे। पर ये सांप थोड़ी लगा था कि माताजी को भी उठा करके बिठाओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े होंगे। इससे सिद्ध होता है कि रावण माता का ही भाव था जानकी के प्रति। तो कहते हैं फिर उन्होंने अपने आप तर्क दिया। फिर उसने ये क्यों कहा जानकी जी से अशोक वाटिका में, तब अनचरी करहुं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। चाहता था कि

आत्मा, वास्तव में आपकी दृष्टि पड़ने से ही मेरा कल्याण होगा। इतनी स्त्रियों को मैंने यहां चुरा करके रखा हुआ है, ये और मैं हम सब पाप के भागी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कृपा दृष्टि यदि मेरे और इनके ऊपर पड़ जावे तो हमारा और इनका सबका कल्याण हो सकता है। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार आप कृपा दृष्टि डाल दें, क्योंकि माता की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सारे दोष माफ, सौ खून माफ। जटायु को जब राम जी ने गले से लगाया और जटायु जी का दाह संस्कार किया, जबकि पक्षी का संस्कार ऐसा करना नियम विरुद्ध है, और भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया तो लिखा है कि जटायु हरि का रूप राम का रूप लेखन के वैकुंठ गया, हरि का रूप ले लिया, उसको मुक्ति मिल गई। तो प्रश्न होता है कि जटायु को मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि मुक्ति को पाने के लिए जिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है वो जटायु के पास में तो था ही नहीं। एक तो पक्षी, और पक्षियों में भी सबसे निकृष्ट पक्षी यदि कोई होता है तो वो गिद्ध होता है, सामिस भोगी, सामिस भोजी होता है वो। ये गिद्ध जो होता है मरे हुए पशुओं को खाता है, उस परिवार में जन्मे थे जटायु जी। फिर उसको मुक्ति क्यों मिली? बोले सत्संगी होंगे। जटायु ने अपने जीवन में किसी संत के पास बैठकर दो मिनट सत्संग किया ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा। फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई? बोले जटायु माला जपते होंगे, 50 माला रोज, श्री राम शरणम मम है, तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं। गिद्ध जाति में जन्म लिया, मांस भक्षण करने वाला परिवार, माला कभी जपी नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, फलाहार एकादशी व्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं। फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं, तुलसी बाबा तो लिखते हैं कि वो हरि का रूप दूसरा राम बन गया, और हरि रूप लेकर के जटायु सीधा वैकुंठ गया। क्यों? बोलो उसमें कोई सदगुण नहीं था, मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई, प्राणों की बाजी लगा दी, और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और जैसी कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया, भगवंत भी हो गया, और मुक्ति भी पा लिया। मां की जिस पर कृपा उसके लिए कौन बड़ी बात है। इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई तो वो मुक्त हो गया, राम बनकर चला गया, मुझ पर और इन पर दृष्टि पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उसको ये कंफर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है। एक और बात, जब सबरी को उपदेश देकर के हनुमंत के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीव के साथ में हुई, और सुग्रीव जी महाराज ने कह दिया कि हां हां जरूर कोई नारी थी, रोती जा रही थी आकाश मार्ग से, हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मंगाए, ये आभूषण वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, हम लोगों ने इनको उठा लिया, ये रहे। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जानामि केजूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये केयूर हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं, नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं, उनके चरणों की नित्य वंदना करता, इनको तो मैं पहचानता हूं। राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे, लक्ष्मण का नहीं, इस आदमी के संग मित्रता मत कर। राम जी बोले क्यों? नहीं, ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं। बोले क्यों? माता जानकी को इसने रोते हुए जाते देखा, फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया। अरे परिचय नहीं था, ठीक है, ये जानता नहीं था कौन है, ठीक है, यदि ये वीर होता, यदि इसमें मानवता होती, यदि इसमें जरा भी मनुष्यत्व होता तो किसी अबला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देख रहा है कि कोई राक्षस हरण करके रह जा रहा है, तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसे भीरू, ऐसे डरपोक आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा, मैं इसका विरोध करता हूं, बिल्कुल मित्र मत बनाओ। फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी, उसको मित्र बनाया। क्यों?
क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को घेरती जा रही थी, सुग्रीव उनको उठा रहे थे, तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा, उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा और माता की नजर उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई, इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहू का मात अवसर पाए, कबहू का अंब अवसर पाए, माता कभी अवसर मिले तो मेरी पत्र का राम के चरणों पर पहुंचा देना। क्योंकि आप उनके अति निकट हैं, मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा। फिर तो बाली का उद्धार हुआ, सुग्रीव को गद्दी मिली, बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया और सब लोग जानते हैं। लंका में श्री हनुमंतलाल पधारे और हनुमान जी महाराज तीन विघ्न आए थे रास्ते में, और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ, लंका जल गई, मुद्रिका दे दी थी, चूड़ामणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी, भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, विभीषण की शरणागति हुई, और राम रावण योर युद्धे राम रावण योरी वह, राम रावण का बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया और अंत में 31वां बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से और रावण की मृत्यु हो गई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया, राम के बिना घर में प्रकाश कैसा। 14 वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, रघुवर नंगे चरणों से वन में भ्रमण करते हैं, हम पादुका कैसे पहने। 14 वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया, विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल। यह वैचित्र है। हनुमंत ने सूचना दी और कहते हैं श्री भरतलाल ने देखा आज 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, कोई सूचना नहीं आई। भरतलाल जी महाराज तुरंत महल गुफा से निकले, नंदीग्राम से सेनापति महामंत्री पीछे दौड़ रहे, महाराज सुनिए महाराज सुनिए, बोले मैं कुलंगार हूं, मेरी वजह से रघुवर को इतना क्लेश उठाना पड़ा और वो दौड़ते जा रहे। दौड़े दौड़े महात्मा भरत जी गए, सैनिक रोक रहे, देखे रुके नहीं, उफान लेकर के बह रही है महारानी सरजू। भरतलाल टीले पर चढ़ के धड़ाम से सरजू में छलांग लगा दी, राम से कहा था 14 वर्ष एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। और भरतलाल ने जैसे ही सरजू में छलांग लगाई त्राही त्राही करने लगे सब लोग, इतना उफान भरता हुआ पानी देखा तो 2 महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले। भरत ने कहा कौन है आप लोग, मर जाने दीजिए ना मुझे, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं जीना नहीं चाहता। उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो राम की चरण पादुका हैं, चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए, मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है, जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे, हम दोनों चरण पादुका है। भरत जी लौट करके आए, हनुमंत ने सूचना दी अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। भरत राम जी मिले, माताओं को प्रणाम किया, प्रथम तिलक वशिष्ठ मन किन्हा। रूपशील और बलिय तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है, कोई रूपवान होते हैं तो धनवान शीलवान नहीं होते, कोई शीलवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, लेकिन राम कृष्ण रूपवान शीलवान और बलवान तीनों ही हैं। भागवत के अनुसार 13,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया, रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक राम ने प्रशासन किया, वाल्मीकि में लिखा है 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, 11,000 वर्ष राम ने प्रशासन किया, और भागवत में लिखा है 13,000 वर्षों तक राम जी रहे।
किसी ने पूछा ऐसा क्यों? अपने ऋषियों का यह मंतव्य है कि 2000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे, उनके पुण्य कार्य को, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2000 वर्ष और निवास किया और अवध वासियों को साथ में लेकर के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा केवल 1.5 अध्याय में है, बहुत संक्षिप्त, इसलिए संक्षिप्त कही गई, और कृष्ण कथा 115 अध्याय में बहुत विस्तृत है। यदि विस्तार करें तो रामायण सप्तकोटि अपारा, हे भगवान, हजारों जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती। रामचरित इतना महान, इतना अद्भुत है। मेरे बाबा जो थे ना, वो हमको 1 मिनट में राम कथा सुनाते थे, पंडित भूपदेव उपाध्याय। हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते, बोले राम कथा सुनाऊं, मैंने सुनाओ, तो बाबा कहते एक राम अन्ना, एक राम अन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी लंक जराई, और बात कछु बातन्ना, तुलसी लग गए पोथन्ना। हो गई राम कथा 1 मिनट में, राम कथा। लेकिन राम कथा कहीं जीवन बीत जाए, राम कथा कभी पूरी नहीं होती। ऐसा है विचित्र रामचरित्र। सारभल में 36 या 34 भागवत कथा करते हैं हम, एक राम कथा भी कहते हैं कभी कभी। हाँ, एक बार वृंदावन ने भी कही थी मैंने राम कथा 9 दिन तक, बिल्कुल भागवत के क्रम से 6 घंटे रोज। बड़ा आनंद आता है। मेरे राघव की कथा बहुत प्यारी है, बड़ी आदर्श है। आइए राम के चरणों में हम प्रणाम कर लें और आज की कथा का शुभारंभ करें। जल्दी गोकुल चलना है, बेचारे 2 बजे से ही पहने सज धज करके लोग बैठे हैं। हाँ, तो कन्हैया के पास चलना है जन्म। अच्छा सुनिए, किसी ने पूछा क्यों जी इतनी संक्षिप्त राम कथा कहनी थी श्री सुखदेव जी को, तो नहीं कहते तो भी चलता? बोले नहीं, कहना जरूरी था। याज्ञवल्क मुनि से भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क जी ने उनको शिव कथा सुनाई, फिर राम कथा कही। तो जब तक व्यक्ति शिव कथा नहीं सुनेगा तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता, और जब तक रामचरित्र नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा,

शिव कथा नहीं सुनेगा तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता, और जब तक रामचरित्र नहीं सुनेगा, राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा। पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी, इसलिए बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ गाते हैं।

भगवान राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं,

राजन, मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं। जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे, बिल्कुल मन को एकाग्र करिए। रामकथा में जितनी एकाग्रता से आप थे, वैसी एकाग्रता रखें, अच्छा लगेगा। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुरुरवा इसी वंश में गाधी, गाधी के तने विश्वामित्र, गाधी की बेटी के बेटा जमदग्नि, उनके पुत्र परशुराम आदि। विश्वामित्र महाराज के वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए नहुष। नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए, यति, यजाति, संजाति, आयति, वियति, कृति। उसमें यजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं, उनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। देवयानी का अपराध किया था ना शर्मिष्ठा राजकुमारी ने, इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई। राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा।

0: सर्वनिष्ठा वारस पर्वणि।
1: यदु और तुर्वसु ये दो पुत्र हुए महारानी देवयानी के, और द्रुहियु अनुपुरु तीन हुए शर्मिष्ठा के। ध्यान से सुने, शुक्राचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया, और जजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर हजार वर्षों तक कामोपभोग किया। कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है। इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे, वश में करेंगे, तो ही संभव है। राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानी हो रही है, पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घृत डालेंगे, अग्नि कभी बुझेगी? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बड़ा सुंदर सूत्र दिया राजा जजाति। कहते हैं माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधु के समान भी दुलार युक्त आदरणीय नारियों के साथ में विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती। बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाति वन को चले गए, और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं, पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे, और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है। इसी वंश में आदरणीय रंतिदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतिदेव के जीवन की, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में, पूरा भंडार खोल दिया प्रजा के लिए, जिसको जो चाहिए सो मांगे। थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था, वो जल पान करने बैठे, एक चांडाल कुत्ते लेके आ गया, मैं भी प्यासा ये भी प्यासे। रंतिदेव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े, और आकाश की ओर देखकर के बोले, प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो और यदि सबकी बातें तुम सुनते हो अंदर बैठ करके, तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है, मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना। मुझे वैकुंठ का पद नहीं चाहिए, मैं मोक्ष लेकर भी करूंगा क्या, केवल एक बर देना,

मुझे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति नहीं चाहिए। एक ही बर देना, आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवंत दुखा। दुनिया के जितने प्राणी हैं, जितने दुखी जीव हैं, उनके दिल में जाकर मैं बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव मैं करता रहूं, यानी संसार के लोगों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा जो सुख है वो दुनिया के लोगों को प्राप्त हो जाए। इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। इस वंश में आगे चल करके पांचाल वंश, कौरव वंश, ये कई शाखाएं, शाखा पर शाखा निकलती चली गई, लेकिन जजाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो यदु है ना, कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में यदु महाराज के वंश में एक राजा हुए देवमीड, और देवमीड महाराज की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य। सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि, अर्जन्य पर्जन्य के नवनंद हुए जो गोकुल में बास करते हैं, नवनंद नंद बाबा आदि।

सतांगतिहि सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतस्सु मुखस्सूक्ष्मस्सुघोषस्सुखदस्सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः सुवापनस्वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मगुद्धर्मकुद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृत